0: अर्को चाहिँ कम्पनीले रनअवे गरेको, त्यसपछिको भनेको चाहिँ यो सडकमा अवाञ्छित क्रियाकलाप गरेको भन्ने चाहिँ बढी जसो हामी पाउँछौँ। तर यसको अर्को फेरि पक्ष के छ भने साउदीबाट रिटर्न हुनको लागि, आफ्नो देश फर्किनको लागि एक्जिट भिसा अनिवार्य भएको छ विद्यमान कानुनी व्यवस्था। यो कानुनी व्यवस्थामा अलिकति झन्झटिलो जस्तो अनि प्रोसेस पुर्याउनलाई गाह्रो हुने जस्तो पनि नागरिकहरूले फिल गर्नुहुन्छ।
1: 384,000 जति नेपाली त्यहाँ छन् भनिन्छ परराष्ट्र मन्त्रालयकै विवरण अनुसार, कति जति होला नेपालीहरू त्यहाँ आफ्नो श्रमको हैसियत गुमाएर या आवासीय अनुमति गुमाएर बसिरहेकाहरू?
0: 50,000-1,00,000 संख्यामा चाहिँ ती व्यक्तिहरू अझै पनि अकामा एक्सपायर हुने, एक्सपायर भएको मेसेजहरू अङ्ग्रेजीमा अरबीमा हाम्रो चाहिँ उहाँहरूको मोबाइलमा जानेर त्यो मोबाइलमा के मेसेज आयो भनेर इग्नोर गरेको कारणले उहाँहरू त्यो स्ट्याटसमा हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अनुमान छ। तैपनि हामीले ती कम्पनीहरूसँग समन्वय हुँदाखेरि सबै कम्पनीहरूलाई अपटुडेट अकामा राखिदिनलाई अनुरोध गर्ने गरेका छौँ।
2: यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साझापख यहीँ सकिन्छ। भोलि बेलुकी 9:15 हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
3: Pour vous délivrer votre certificat médical, et quand vous avez le certificat médical, automatiquement vous avez la liberté de porter plainte automatiquement à la police ou à la gendarmerie, mais le certificat permet que automatiquement on puisse vous prendre en charge au plan médical, vous soigner. Si vous et vous proposez d'aller dans une des maisons d'accueil pour être plus protégé, vous allez être encore revu en dernier point par un bureau juridique, une association de juristes, pour vous demander le choix de porter plainte. Voici les actions que vous pouvez poser dans l'immédiat. Donc dans l'immédiat, vous avez un lieu où vous devez déclarer ce dont vous êtes victime. Si vous pouvez vous déplacer, si vous pouvez pas, il faut qu'il y ait quelqu'un dans l'entourage qui puisse appeler. Dans ce cas, les forces de sécurité viennent directement vers vous et vous prennent. La deuxième action, c'est l'établissement du certificat médical. La troisième action, c'est vous en face du bureau juridique. Et la quatrième action, c'est votre prise en charge totale si physiquement vous avez été heurté ou on constate que émotionnellement vous avez besoin d'une prise en charge psychologique.
4: S'il y a une seule mesure à prendre d'urgence maintenant pour protéger les femmes, ce serait laquelle?
3: Ben, je dirais que celles qui sont déjà en place sont très efficaces, parce que vous voyez que nous sommes passés d'au moins de 1000 déclarés à 10 fois plus déclarés. Et moi, je pense que s'il y a une urgence, une action qu'il faut encourager, c'est le règlement à l'amiable qui ne doivent plus exister en Côte d'Ivoire.
4: Merci beaucoup, Madame Touré.
3: C'est moi qui vous remercie, Madame Bonny.
5: Vous écoutez BBC Afrique, Yamoussoukro,